0: अनलर्न का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने मैन इंगेजमेंट और उसको परपेट्रेटर्स की ट्रेनिंग या रिहैबिलिटेशन किस तरीके से करनी है, उनको काउंसिल कैसे करना है, उसकी इंगेजमेंट कैसे रिक्वायर्ड है, कहीं पे भी जहाँ पे एक कंट्रोलिंग बिहेवियर है या एक माइंडसेट है कि हम वी आर सपोज टू कंट्रोल द अदर पर्सन और ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, तो वहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा प्रमोट होती है और ज़्यादा एग्रेवेट होती है, जहाँ पे उस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत होती है।
1: आखिरी दिन तरबियती कोर्स के शुरका ने अपना एक्शन प्लान या मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल पेश किया, और उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने तशद्दुद करने वाले पर तवज्जो मरकूज़ करने की बात की, जिसे विक्टिमाइजर अप्रोच कहा जाता है।
2: वैसे खलील शाह, ये बड़ी इत्मीनान बख्श बात है, जैसे कि रज़िया सुल्ताना साहबा ने कहा कि ख़वातीन को महफूज पनागाह फ्राहम करना तरजीह है, लेकिन इस मसले के हल के लिए वजूहात पर तवज्जो मरकूज़ करना ही बुनियादी तरीक़ाकार है।
1: जी बिल्कुल, उसामी साहिबा के भी यही ख्यालात हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तशद्दुद या इस्तेहसाल करने वालों तक रसाई जापान में भी एक मसला है।
2: अरे अच्छा,
1: तो उम्मीद है कि दोनों ममालिक तशद्दुद करने वालों के लिए भी कोई प्रोग्राम तैयार कर पाएंगे, ताकि सिन्फी तशद्दुद की रोकथाम में मदद मिल सके।
3: बिल्कुल, मैं तो इत्तफाक करती हूँ उस बात से। अच्छा, बाकी जो है वो दूसरा आइडिया क्या है जो उन्हें जापान के दौरे से मिला?
1: तो सुनते हैं फिर मुनीजा साहिबा की ही जुबानी।
0: अगेन वी लर्न द रोल ऑफ बाईस्टैंडर्स, उसमें उनको इंगेज करना और वो इन्फॉर्मेशन और मैसिव अवेयरनेस करनी कि हर बंदे को पता हो। अगेन वी शुड नो द लॉज, वी शुड बी अवेयर ऑफ दी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इन द अक्रॉस सॉरी विद इन आर विसिनिटी, जो जो सर्विसेज जो जो मौजूद हैं, लॉ कहाँ है, क्या राइट्स हैं, एवरी वन शुड बी अवेयर ऑफ दैट। उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ये कि हम कम्युनिटी में वॉलंटियर्स और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के थ्रू यूथ इंगेजमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को तैयार करें जो कि हमारे एम्बेसडर्स बने और जो साइकोलॉजिकल, एटलीस्ट साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें, और हम प्रिवेंशन प्लान के ऊपर काम करें, जिसमें हम पर्टिकुलरली जो हमने यहाँ पर चीज़ देखी डेटिंग वायलेंस से रिलेटेड, वो अक्रॉस द ग्लोब दैट इज़ नोन एज इंटरमेट पार्ट वायलेंस, तो हम उसके ऊपर काम करने के लिए यूथ को प्रिपेयर करेंगे ताकि वो एक प्रिवेंटिव लेवल पे चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकें।
1: इस ट्रेनिंग के शुरका ने ट्रेनिंग के दौरान एक वर्कशॉप में शिरकत की, जिसका अहतमाम तलबा रजाकारों और मुलाजमत पेशा अफराद की तंजीम ने किया था। तो वहाँ से उन्हें बाई स्टैंडर्ड यानी मौके पर मौजूद सुलह की कोशिश करने वाले अफराद के बारे में इल्म हुआ।
3: अच्छा, तो ये अब एक नई इस्तलाह है, यानी इसका मतलब है कि हम भी बाय स्टैंडर्ड हो सकते हैं।
1: जी, और मुनीजा साहिबा ने इस वर्कशॉप से ये आइडिया लिया, और उन्होंने महसूस किया कि नौजवान नस्ल सिन्फी तशद्दुद के खात्मे के लिए एक मुहर्रिक क़ुव्वत बन सकती है।
2: मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी कोशिशों का अच्छा सिला मिलेगा, और दुआ है कि सिन्फी तशद्दुद के खात्मे का प्रोजेक्ट ट्रांजिशनल होम और उनके नए इकदाम ना सिर्फ पंजाब बल्कि पंजाब से बाहर भी अपने असरात दिखाएं।
3: बस हमारी सबकी यही दुआ है कि इन सब की काविशें ज़रूर रंग दाएं और सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद की शिकार ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि माशरे के हर मुतासरा फ़र्द को अमान मिल सके।
1: तो सामीन, दो हिस्सों पर मबनी रिपोर्ट आपने सुनी। आप इस बारे में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए इंतहाई अहम है।
2: और दोस्तों, हम अपनी रिपोर्ट का इख्तिताम केंशी योनेज़ू के गाने सायोनारा माता इत्सु का, यानी अलविदा फिर मिलेंगे कभी ना कभी पर करेंगे। ये गाना एनएचके के 2024 के मॉर्निंग ड्रामा तोरा नी सुबासा के लिए लिखा गया था। तोरा नी सुबासा, ये एक कहावत है कि शेर जैसे मजबूत किसी किरदार को पर देकर उसकी कुव्वते परवाज को मजीद बढ़ाना।
3: मैं बताती चलूं कि सीरीज की मरकजी किरदार का निक नेम तोरा चा है, जो जापान की पहली खातून वकील से मुतासिर होकर बनाई गई। ये उस औरत की कहानी है जिसने शोवा के हंगामा खेज दौर में अपने साथियों के साथ मिलकर कानूनी दुनिया में एक ऐसा रास्ता बनाया जो पहले मौजूद ही नहीं था।
2: तो आज की रिपोर्ट की मुनासिबत से गीत सुनते हैं सायोनारा माता इत्सु का, आइए सब मिलकर लुत्फ उठाएं।